रचना मैं गोहाना वालों के लिए लेकर आई थी कि मैंने आपको पिछली बार रावण की रचना सुनाई थी और बहुत सारी सुनाई थी रचनाएं, लेकिन इस बार पिता के चरणों में सच मानिएगा, दिल से ये रचना अगर सुनेंगे तो आपकी आंखों से भाव बहने लगेगा। ताली लगा के गाइए माँ।

है, बच्चे के चोट लग जाती है या किसी मुसीबत में होता है तो माँ रो रो कर पूरा घर सर पे उठा लेती है, कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन पिता एक कोने में चुपचाप खड़ा रहता है, उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं आता। बोलिए सच्चे दरबार की। सुनिएगा,

भजन समझ में आ रहा है सबको? पसंद आ रहा है नहीं आ रहा? अब सोचिए, जाने वालों ने क्या खोया और बैठने वालों ने क्या पाया। हाथ उठाकर जरा ताली लगाइए एक बार मिलके कैसे। 1 2 3

कि माँ के पैरों में जन्नत है, लेकिन मेरा कहना यह है कि माँ के पैरों में अगर जन्नत है, बात सही है, लेकिन उस जन्नत पे पहुंचने का रास्ता पिता है। बोलिए सच्चे दरबार की, सुनिएगा।

तुम्हें ये अंतरा मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये अंतरा अगर आप सबको भी अच्छा लगे तो लिखने वाले के लिए एंड में तालियां जरूर लगाइएगा। आखिर पिता को पिता का दर्जा जो दिया जाता है, घर का मुखिया कहलाता है, वो घर का मुखिया क्यों कहलाता है वो सुनिएगा। क्यों?

0: जीवन पथ पर चलना सिखाया।
1: और सबसे बड़ा त्याग पिता ने क्या किया,
0: जोड़ी जोड़ी अपनी संपत्ति का, जोड़ी जोड़ी

0: आ जाइए अपने पिता के चरणों में आ जाए। जो भी बेटे यहाँ पर बैठे अपने पिता के चरणों में आ जाए। सभी पिता जहाँ पर भी बैठे हैं उनके चरणों में जाकर बैठ बैठ।
1: पिता कौन है?

0: हर संकट से पार पिता हमें ले जाते हैं हर संकट से पार।
1: कभी देखा है दिनेश जी आपने?
2: जी
1: हर पल हम माँ को याद करते हैं, लेकिन जब जब गाड़ी चलाते हुए जाते हैं सामने से एकदम से कोई ट्रक आता है तो कौन याद आता है? अरे बाप रे, संकट में तो पिताजी याद आते हैं।
0: पिता हमें ले जाते हैं हर संकट से पार, हो पिता हमें सिखलाते।
1: और भरत भाई, पिता कैसे होते हैं अभी दिनेश भाई ने आपको बताया।

0: है हर संकट से पार। हो पिता हमें सिखलाते।
1: और सबसे बड़ी चीज क्या है बताया हमें कब क्या करना है, ये कौन सिखाता है, संस्कार कौन देता है? पिता। बिल्कुल ऐसे कब

0: मेरी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। मैंने आपको पिता के पास में बिठाया है, भरत भाई बैठे हैं, आंखों में अश्रु धारा है, आशीष भाई बैठे हैं
1: उधर भी देखिए, राजीव जी हमारे देखिए इधर उनके आंखों में आंसू हैं, पिताजी के आंखों में आंसू हैं।
0: दिनेश भाई अक्सर बताए क्या होता है, हम पता नहीं किस किस को आई लव यू जाके बोलते हैं, लेकिन शायद माता पिता को कभी नहीं भूल पाते।
1: जी जी,
0: आप अपने पिता के पास बैठे हैं, माँ के पास बैठे हैं ना, एक बार निवेदन करूंगा, जाकर के उन्हें गले लगाइए।
1: जो भी बच्चे अपने पिता के पास बैठे हैं, चरणों में बैठे, एक बार पिताजी को टाइट हग कर लीजिए, गले लग जाइए,
0: माँ को पिताजी को गले लगा लीजिए दिल से। ऐसा मौका फिर पता नहीं कब मिलेगा। और जिनके माता पिता यहाँ नहीं बैठे ना, वो अनुमोदना के लिए तालियां जरूर बजाइए इनके लिए, ऐसे बेटों के लिए। और कोई बात नहीं, आपके माता पिता यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, आप जब भी घर जाएं, जब भी माता पिता से मिलें, सबसे पहले जाकर के उन्हें गले लगाइएगा।
1: राजीव जी, हकीकत में हम जो नए नए पोशाक पहनते हैं, और ये विशेष युवा पीढ़ियों के लिए कहना चाहूंगा, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, पिताजी 40,000-50,000 का मोबाइल लाके देते हैं, लेकिन खुद छोटा सा मोबाइल रखते हैं, खुद के बिल्कुल। हम जो सूट पहनते हैं, लेकिन पिताजी सिंपल सी ड्रेस पहनते हैं। ये जो हमारे कपड़ों पर जो खुशबू है ना, इत्र की, सेंट की, परफ्यूम, ये हमारे पिताजी के मेहनत के पसीने की खुशबू है। ये पिता के जो हमें संस्कार मिले हैं, क्योंकि पिता हमारे परिवार का पालन करता है। माँ तो सिर्फ मारो दिख रो, लेकिन उस परिवार को संभालने वाला वो पिता ही होता है। उस पिता के प्रति एक बार लग जाइए गले, लग जाइए पिता के,
0: बिल्कुल मत शर्माना आज।
1: और क्या कहते हैं संगीत के साथ राजीव जी,
0: अरे आज अगर पिताजी नहीं होते तो हम इस संसार में कैसे आते। क्या हुआ,
1: कई योगी आंखें नाम है फोटोग्राफर भाई, ये भी फफक फफक के रो रहे हैं। हकीकत में कईयों के पिता यहाँ पर नहीं है, कईयों की जीवित अवस्था में भी नहीं है, दिव्य लोक से उनका आशीर्वाद बरस रहा है। आज उनकी छवि को याद कीजिएगा, आपके पिता अगर इस संसार में नहीं है तो उनको याद कीजिएगा, श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा। आज के इस कार्य के माध्यम से, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, जाने अनजाने में पूरे जीवन भर हमने कुछ न कुछ कोई गलती की है, तो आज कहने का अवसर है। गलतियों का पुतला होता है इंसान। हमारे भरत जी, आशीष जी यहाँ पर पिताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं, पिताजी के गले लग रहे हैं और आंखों में जो है अश्रु धारा है। पिताजी ने जिस प्रकार से आपके जीवन को सवारा है, आप आज जो काबिल हैं, वो सब पिता की मेहरबानी है। ऐसे पिता के चरणों में नमन करते हुए,
0: मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता एक ऐसी चीज है, ऐसी हस्ती है कि हम क्या बोले, कैसे उनका शुक्रिया अदा करें। मैं देख रहा हूँ हमारे कैमरा मैन यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी देर से वो फोटो भी नहीं खींच पा रहे, शायद इतने आंसू तो शायद ही किसी की आंखों में होंगे।
1: बिल्कुल,
0: मुझे नहीं पता उनके दिल में क्या दर्द है।
1: देखिए राजीव जी, आंसू वो ही बहाता है। कई लोग सोचते हैं आंसू बहाने वाला कमजोर होता है, कमजोर नहीं होता,
0: बहुत हिम्मत वाला होता है ना।
1: जिसके दिल में अपने माता और पिता के लिए प्रेम होता है, और वो प्रेम इतना प्रबल हो जाता है, अपना आप जो है आंसू आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं।
0: आइए शुक्रिया अदा करें उन माता पिता को जिन्होंने हमें इस संसार में लेकर के आए और हमें इस दुनिया से रूबरू कराया। मुझे इस दुनिया में लाया और बोलना चलना

0: जितनी बार हो सके ना गले मिलते रहना अपने माता पिता से, जब तक मैं ये गीत गाऊं, जब तक ये मैं गाता रहूं तब तक।
1: जी हाँ, भरत जी यहाँ पर है, आशीष जी हैं, इन दो बेटों के साथ इनकी बेटी भी यहाँ पर विराजमान है, कविता दी। मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, कविता दी आप ही बता रहे, और भरत जी के साथ इनकी भार्या सुश्राविका, संगीता जी और आशीष जी के साथ अल्पा जी, संगीता भाभी, अल्पा भाभी।

एक वचन अपने मन में लेके जाना, और वो वचन क्या होना चाहिए कि माँ पिताजी मम्मी पापा

0: क्या बात है, जोरदार ताली,
1: जोरदार ताली। अरे मेरी क्या औकात है,
0: जी जी
1: हमारी क्या औकात है। अगर मैं सच कहूँ ना कि जब देव भी मात पिता के उपकार चुका

0: मैं फर्ज निभाऊं तो।
1: फर्ज क्या? सिर्फ इतना सा। जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, जिन्होंने ये सोचा कि शायद जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा बेटा हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सिर्फ इतना सा फर्ज हमने चुका दिया। एक सच बात कहूं, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति पैसे से कभी अमीर नहीं होता, वो अमीर होता है रिश्तों से। और सबसे बड़े रिश्ते अगर मैं कहना चाहूं दिनेश भाई, तो यही कहना चाहूंगा वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है जिसके माता पिता जीवित हैं और उसके साथ रहते हैं।
2: क्या बात है, बिल्कुल सही।
1: वरन उसकी जगह पर अगर मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए तो पड़े हैं लेकिन माता पिता जीवित हैं और उस बेटे के होते हुए माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, वो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है।
2: राजीव जी, अक्सर जो है कई लोग मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। आपके पिताजी कहाँ रहते हैं ऐसा कहते हैं, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, लेकिन उसमें भी वो भूल करते हैं। हमें ये कहना चाहिए कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, क्योंकि ये वर्षावास से चातुर्मास से कईयों ने व्रत किए होंगे, तपस्या की होगी, कईयों की बड़ी बड़ी तपस्या होगी, लेकिन किसी कलमकार ने ठीक ही कहा है कि किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, लेकिन कबूल होगा उसका जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा, जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा। क्योंकि माँ बाप से जिनको तनिक भी प्यार नहीं है, दुनिया में उसे जीने का अधिकार नहीं है। माँ बाप से जिनको तनिक भी प्यार नहीं है, दुनिया में उसे जीने का अधिकार नहीं है। सुख शांति की तलाश में कितना ही दौड़ ले, तीनों लोक में कहीं भी उद्धार नहीं है, तीनों लोक में कहीं भी उद्धार नहीं है। लेकिन जब मैं जैन समाज को देखता हूं, जब जैन श्रावक श्राविकाओं को देखता हूं, तो बड़े ही गर्व के साथ कहता हूं, क्योंकि भले ही देश में इतने वृद्धाश्रम खुले हैं, लेकिन अपने जैन श्रावक जो हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति वृद्धाश्रम में नहीं है। और हमारे जैनों के बच्चे किस प्रकार से माता पिता का जो है सम्मान करते हैं, ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण देखिए यहाँ पर। ये भरत भाई, आशीष भाई, किस प्रकार से इन्होंने जोरदार आयोजन किया अपने माता पिता के लिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए।
1: दिनेश भाई, मैं जब ये बात आई तो मुझे एक चीज याद आती है, एक बहुत पुरानी बात है और वाकई में वो आज के जमाने में सत्य होती है। एक शेर मैंने कहीं सुना था, ऐसा तो कुछ था कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं खुश नसीब था कि मेरे हिस्से में मां आई।
2: क्या बात, क्या बात।
1: छोटे बड़े की बातें तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। मैं मुझे बहुत से लोग हैं जो बचपन से जानते हैं। एक सच्ची बात दिल से आपको कहना चाहूंगा, अभी जो दिनेश भाई ने कहा, भरत भाई, कि जैन समाज से कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं है, शायद यही कारण है कि मैं जैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी 90-95% कार्यक्रम मैं जैन समाज के ही करता हूं।
2: क्या बात है।
1: और ये कोई बटरिंग वाला काम नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है, आज भी श्रवण कुमार जैसा बेटा कहीं देखने को मिलेगा तो सबसे ज्यादा हमारे जैन घरों में। उसका सबसे बड़ा कारण है, आज भी अगर संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली की परंपरा अगर कहीं है तो सिर्फ हमारे परिवारों में होती है। एक बार पूरे जैन समाज के लिए जोरदार दिल से तालियां होनी चाहिए।
3: मिलाया और बोलना चलना सिखाया, मुझे इस दुनिया में लाया और बोल

एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक सुत्रताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा।

माता पिता की महिमा सुनने में आनंद, थोड़ी आवाज बढ़ाओ, आनंद नहीं आ रहा? आ रहा है ना? बिल्कुल दिल से ताली बजाना अपने माता पिता के लिए। मेरी माता है, मैंने पूरे पूरे हाथ उठा के एक साथ

की बारी आती है जो हमको संसार सागर के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, सत्कर्मों पर चलने की राह दिखाते हैं। ऐसे गुरुवर को हम शत शत प्रणाम करते हैं। आप में से कितने लोगों ने गुरु बनाए हैं एक बार हाथ उठा के बताइए। ये बात, और जिन्होंने नहीं बनाए वो भी हाथ उठाइए, क्योंकि इंसान का सबसे पहला गुरु उसके माता पिता होते हैं, अपने माता पिता के। हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि जीवन में अगर आपने गुरु नहीं बनाए तो मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए गुरु जरूर बनाइए अपने जीवन, चाहे अपने माता पिता को ही बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए दोनों।

0: पाए। नेपाल टेलिकम को सहुलियत दर का पैकेज खरीद करना #1415# गर्नुहोस्।
1: नेपाल टेलिकम राष्ट्र को संचार।
2: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ FM अध्यात्म ज्योति 104.8

पिता पर कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। सबसे पहले कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया, मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। पिता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पिता कैसे बच्चों को पालते हैं, एक नज्म सुनाता हूं पिता पर। उसी के अंश हैं हम सब, उसी का सच्चा नाता है, उसी की परवरिश से अपना जीवन सांसें पाता है, वही बचपन में हमको अपने कंधों पर बिठाता है, हमें उंगली पकड़कर बस वही चलना सिखाता है, हमारे वास्ते जो अपने सब दुख भूल जाता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। पिता उपवास करके अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिता बच्चों के सुख में अपने सब दुख भूल जाते हैं, पिता बच्चों को अपनी गोद में मेला घुमाते हैं, पिता बच्चों के सपनों को भी इस दुनिया में लाते हैं, पिता का नाम तो ता जिंदगी ही काम आता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। पिता कहते हैं हम जिसको।

0: जिससे हर मुसीबत हार जाती है, पिता वाशय है जिससे हर मुसीबत हार जाती है, सभी रिश्ते हैं मतलब के, पिता ही असल साथी है, वही है धन्य जो चरणों में उनके सर झुकाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। इन्हीं पद चिन्हों पर चलकर सफर आसान हो जाए, जमाने और दुनिया में भी पहचान हो जाए, पिता क्या है जिसे भी इसका थोड़ा ज्ञान हो जाए, फिर उस इंसान की भी जिंदगी वरदान हो जाए। हमारी जिंदगी का हर पल जो फूलों से सजाता है, हमारी जिंदगी हर पल जो फूलों से सजाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। पिता के दम से ही माँ के सभी श्रृंगार होते हैं, कभी फूलों से लगते हैं कभी तलवार होते हैं, पिता के हाथों ही रिश्तों के बेड़े पार होते हैं, हमारी हर कहानी का पिता किरदार होते हैं, पिता का साया सर पर हो तो हर मौसम सुहाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। पिता की शक्ति पर चलता नहीं जादू न कुछ टोना, पिता की सीख होती है मुसीबत में भी मत रोना, पिता कहते हैं संकट में कभी साहस नहीं खोना, पिता पीतल की दुनिया में भी होता है खरा सोना, अंधेरे में पिता उम्मीद का सूरज उगाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना बिठाता है। पिता हो तो कभी छूने नहीं पाती कोई मुश्किल, पिता हो तो अकेलापन भी बन जाता है एक महफिल, पिता बिन रास्ता भटकोगे पाओगे न तुम मंजिल, लहू मस्तिष्क बाजू और पिता ही है धड़कता दिल, पिता है आत्मा जो इस बदन में जान लाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। पिता बन जाओगे जब उनके दुख सुख जान जाओगे, पिता के दर्द को पीड़ा को तुम पहचान जाओगे, कभी उनकी तरह जब खेत और खलिहान जाओगे, पिता फौलाद की चट्टान थे यह मान जाओगे, पिता मुश्किल घड़ी में हंसता है सबको हंसाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। अभागे हैं वो बेटे जो पिता को छोड़ देते हैं, घुटन में जीते हैं ताजा हवा को छोड़ देते हैं, निकलती है जो दिल से उस दुआ को छोड़ देते हैं, समझ लीजिए कि वो अपने खुदा को छोड़ देते हैं, पिता सेवक पिता मालिक पिता ही सबका दाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है, हमारे वास्ते जो अपने सब दुख भूल जाता है, पिता का नाम तो ता जिंदगी ही काम आता है, पिता का नाम ही हर जहन में क्यों जगमगाता है, वही है धन्य जो चरणों में उनके सर झुकाता है, हमारी जिंदगी हर पल जो फूलों से सजाता है, पिता का साया सर पर हो तो हर मौसम सुहाता है, अंधेरे में पिता उम्मीद का सूरज उगाता है, पिता है आत्मा जो इस वदन में जान लाता है, पिता मुश्किल घड़ी में हंसता है सबको हंसाता है, पिता सेवक पिता मालिक पिता ही सबका दाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना दिखाता है, वही अपना दिखाता है, वही अपना दिखाता है।
1: आजको यो पावन दिनमा हामी सबैले आफूलाई एउटा प्रश्न सोध्नु आवश्यक छ कि हामीले आफ्नो बुवालाई उहाँको त्याग अनुसारको सम्मान र समय दिन सकेका छौँ? यदि तपाईँको बुवा तपाईँसँगै हुनुहुन्छ भने आजै उहाँलाई अगालो हाल्नुहोस्, उहाँको हात समाउनुहोस् र भन्नुहोस्, बुवा तपाईँ मेरो जीवनको असली नायक हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ काम वा अध्ययनको सिलसिलामा टाढा हुनुहुन्छ भने फोन गरेर केवल कुशल मङ्गल मात्र होइन उहाँको पुराना सम्झनाहरू सुनिदिनुहोस्। र यदि उहाँ यो संसारमा हुनुहुन्न भने उहाँले सिकाउनुभएका असल संस्कार र मार्ग निर्देशनलाई आफ्नो जीवनमा ढालेर उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुहोस्। कुशे औँसीमा कुशको पूजा गर्नु र बुवाको मुख हेर्नुको वास्तविक अर्थ पितृसत्तात्मक घमण्ड वा औपचारिकता निभाउनु होइन, बरु पुस्तान्तरणको खाडललाई माया र सम्मानले पूर्णु हो। आदरणीय श्रोता, सम्पूर्ण बुवाहरूमा बाबुको मुख हेर्ने दिनको हार्दिक शुभकामना। आफ्ना अभिभावकको सम्मान गरौँ, उहाँलाई माया र समय दिउँ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो।

0: जीवन पथ पर चलना सिखाया।
1: और सबसे बड़ा त्याग पिता ने क्या किया?
0: जोड़ी जोड़ी अपनी संपत्ति का, जोड़ी जोड़ी अपनी

0: आ जाइए अपने पिता के चरणों में आ जाए। जो भी बेटे यहाँ पर बैठे हैं अपने पिता के चरणों में आ जाए सभी। पिता जहाँ पर भी बैठे हैं उनके चरणों में जाकर बैठ बैठ।
1: पिता कौन है?

0: है हर संकट से पार, पिता हमें ले जाते है हर संकट से पार।
1: कभी देखा है दिनेश जी आपने?
2: जी,
1: हर पल हम माँ को याद करते हैं, लेकिन जब गाड़ी चलाते हुए जाते हैं, सामने से एकदम से कोई ट्रक आता है तो कौन याद आता है? अरे बाप रे, संकट में तो पिताजी याद आते हैं।

0: एक बार निवेदन करूंगा, जाकर के उन्हें गले लगाइए।
1: जो भी बच्चे अपने पिता के पास बैठे हैं, चरणों में बैठे, एक बार पिताजी को टाइट हग कर लीजिए, गले लग जाइए।
0: माँ को, पिताजी को गले लगा लीजिए दिल से। ऐसा मौका फिर बताने ही कब मिलेगा। और जिनके माता पिता यहाँ नहीं बैठे ना, वो अनुमोदना के लिए तालियां जरूर बजाइए इनके लिए, ऐसे बेटों के लिए। और कोई बात नहीं, आपके माता पिता यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, आप जब भी घर जाएं, जब भी माता पिता से मिले, सबसे पहले जाकर के उन्हें गले लगाइएगा।
1: राजीव जी, हकीकत में हम जो नए नए पोशाक पहनते हैं, और ये विशेष युवा पीढ़ियों के लिए कहना चाहूंगा, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, पिताजी 40,000-50,000 का मोबाइल लाके देते हैं, लेकिन खुद छोटा सा मोबाइल रखते हैं, खुद के बिल्कुल। हम जो सूट पहनते हैं, लेकिन पिताजी सिंपल सी ड्रेस पहनते हैं। ये जो हमारे कपड़ों पर जो खुशबू है ना, इत्र की, सेंट की, परफ्यूम, ये हमारे पिताजी के मेहनत के पसीने की खुशबू है। ये पिता के जो हमें संस्कार मिले हैं, क्योंकि पिता हमारे परिवार का पालन करता है। माँ तो सिर्फ मारो दिख रो, लेकिन उस परिवार को संभालने वाला वो पिता ही होता है। उस पिता के प्रति एक बार लग जाइए गले, लग जाइए पिता के,
0: बिल्कुल मत शर्माना आज।
1: और क्या कहते हैं संगीत के साथ राजीव जी,
0: अरे आज अगर पिताजी नहीं होते तो हम इस संसार में कैसे आते। क्या हुआ?
1: कईयों की आंखें नम है। फोटोग्राफर भाई ये भी फफक फफक के रो रहे हैं। हकीकत में कईयों के पिता यहाँ पर नहीं है, कईयों की जीवित अवस्था में भी नहीं है। दिव्य लोक से उनका आशीर्वाद बरस रहा है। आज उनकी छवि को याद कीजिएगा। आपके पिता अगर इस संसार में नहीं है तो उनको याद कीजिएगा, सदा सुमन अर्पित कीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जाने अनजाने में पूरे जीवन भर हमने कुछ न कुछ कोई गलती की है, तो आज इच्छा में टुकड़म कहने का अवसर है। गलतियों का पुतला होता है इंसान। हमारे भरत जी, आशीष जी यहाँ पर पिताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं, पिताजी के गले लग रहे हैं और आंखों में जो है अश्रु धारा है। पिताजी ने जिस प्रकार से आपके जीवन को सवारा है, आप आज जो काबिल हैं, वो सब पिता की मेहरबानी है। ऐसे पिता के चरणों में नमन करते हुए,
0: मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता एक ऐसी चीज है, ऐसी हस्ती है कि हम क्या बोले, कैसे उनका शुक्रिया अदा करें। मैं देख रहा हूँ हमारे कैमरा मैन यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी देर से वो फोटो भी नहीं खींच पा रहे, शायद इतने आंसू तो शायद ही किसी की आंखों में होंगे।
1: बिल्कुल,
0: मुझे नहीं पता उनके दिल में क्या दर्द है।
1: देखिए राजीव जी, आंसू वही बहाता है। कई लोग सोचते हैं आंसू बहाने वाला कमजोर होता है,

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: காவியல் சுச்சப்பாக்கி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूँ
2: FM AJ 104.8.

एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841 28

0: हाय
1: सिर्फ आहें जो भरे उसको आशिक न कहो, दूर से प्यार करे उसको आशिक न कहो, गम में चुपचाप मरे उसको आशिक न कहो, जो जमाने से डरे उसको

0: के आशिक हो तो
1: या या या दिलबर हो तो
0: के आशिक हो तो ऐसा हो
1: दिलबर हो तो ऐसी हो
0: के आशिक
1: दिलबर
0: के आशिक
1: दिलबर
0: आशिक
1: दिलबर
0: आशिक हो तो

0: सुन्दरी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निःशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निःशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक, काठमाडौँ।
1: Together, we deliver.

काय बंद कर दला जाए भाई, देवा के दे के बंद कर दला जाए, डरा गेल जा, चला जा हम गाना गाए देवा गाव छप रही यार, तनी बनावे पैगौर रे। आय आय आय भाई।

अभिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

रे ससुराह मुझे सतावे रे भैया ससुराह मुझे सतावे वाइफ से हमके मिले ना देला गुरु बना के बना लिहलस चेला हमरा के राम जी बचावे ससुरा।

0: गोल्ड पैलेस, सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736। सिल्वर स्टेट सभी भन्दा पुरानो चांदी को एकमात्र शोरूम
1: सिल्वर स्टेट यहाँ को सेवा में निरंतर लागी रहेका छौं। विगत दुई दशक देखि त्यसैले त हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले यहाँ को विश्वास जित्ना सफल भएका छौं।
0: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधि बाट आफ्नै कारखानामा निर्मित बिना रसायन का पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्य का लागि चाहिने यहाँले चाहे बमोजिम का चाँदी का हरेक प्रकार का सामग्री लगायत गिफ्ट आइटम का लागि
1: सिल्वर स्टेट एउटै छाना मुनि चाँदी का सबै सामानहरू।
0: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाडि फोन नंबर 4227345423355।
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा व उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।
3: अभिन अपने सुनतानी रोवा लोगिन के आपन रेडियो स्टेशन FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: ओल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz.

0: Jones, Weekend, Classic Radio Show.
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर एक बार फिर से दिल से स्वागत करती हूँ मैं, आप ही की रुचि आपके साथ। आज के इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसे गाने लेकर के आई हूँ जो कि प्यार में एक बार फिर से आपका विश्वास बना देंगे। आज एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, प्यार भरी कहानी के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मेरे हिसाब से बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री की ऑफ स्क्रीन सबसे हसीन लव स्टोरी रही है, लेकिन एक ऐसी कहानी रही है जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाए। इतनी खूबसूरत लव स्टोरी, लेकिन उतनी ही कॉन्ट्रोवर्शियल लव स्टोरी भी। ये वो जोड़ी है दैट मेड अस फॉल इन लव विद रोमांस, पैशन एंड ऑफ कोर्स लव। मैं बात कर रही हूं हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी की और ब्यूटी क्वीन रेखा जी की। इनके अफेयर के किस्से तो हम सब से रूबरू हैं, हमने कहीं ना कहीं ढेर सारी कहानियां किस्से इनके बारे में सुने ही हैं। बिग बी और रेखा जी की ये लव स्टोरी, क्लासिक लव स्टोरी की, फिर भी ऐसी कुछ कहानियां हैं, ऐसे किस्से हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड्स रहे हैं और मीडिया से दूर रहे हैं, उन्हें आपके सामने आज मैं लेकर के आने की एक कोशिश करूंगी। आप जानती हैं कि इन्होंने हमेशा कोशिश की कि ये लाइमलाइट से दूर रहें, पब्लिक के सामने इनका ये रिश्ता आ ना पाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि मीडिया को पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बताऊंगी आपको उस किस्से के बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले इनकी रियल लाइफ लव स्टोरी जो थी, जो लव ट्राइंगल था, उसी के ऊपर बेस्ड फिल्म सिलसिला से गाना लता दीदी और अमिताभ बच्चन जी की आवाज में सुना रही हूँ आपको, सुनिए जरा।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

सिलसिला फिल्म सिथाए गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। और आज अमिताभ जी और रेखा जी की अनडाइंग लव स्टोरी के बारे में हम कर रहे हैं बात, और इन्हीं दोनों के कुछ बेहतरीन गाने मैं सुना रही हूं आपको। वैसे इन दोनों ने ये तो डिसाइड करके रखा था कि अपने प्यार को कभी भी किसी के सामने पब्लिकली नहीं आने देंगे। कई बार ऐसा हुआ जरूर कि दोनों ने डिसाइड किया कि पता दे क्या, सामने आ जाए क्या, एक दूसरे के साथ ही रहे क्या, लेकिन किसी न किसी कारण से ये लोग अपने रिश्ते को छुपाते ही चले गए। ये तो आप जानते ही हैं कि इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी 1976 की फिल्म दो अनजाने के साथ में, जब अमिताभ जी जया जी से शादीशुदा थे, लेकिन खबरें तो यही आती थी कि दोनों फिर भी रेखा जी के एक दोस्त के बंगलों पर मिला करते थे। अमिताभ जी हमेशा चाहते थे कि इस मामले पर चुप्पी रखी जाए, लेकिन मीडिया तो मीडिया है, कुछ छुप पाया है क्या मीडिया से। हुआ यूं था कि एक शॉट चल रहा था, और उस शॉट के दौरान अमित जी अपने कोस्टार पर बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उस कोस्टार ने रेखा जी के साथ में थोड़ा मिसबिहेव किया था, और इसी इंसिडेंट के कारण लोगों को पता चल गया कि दोनों को एक दूसरे की कितनी फिक्र है। वैसे वो कौन सा कोस्टार था जिन पर अमित जी भड़के थे, अपना गुस्सा उस कोस्टार पर निकाला था, ये तो आज तक भी किसी को पता नहीं चला है। लेकिन यश चोपड़ा जी ने भी इनके रिलेशनशिप के बारे में एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि हाँ, ये दोनों प्यार में हैं। साथ हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ प्यार में हैं। आपको पता है, एक बार ऐसा हुआ था कि जया जी अमिताभ जी और रेखा जी को साथ में देख करके रो पड़ी थी, और इसे देखने के बाद रेखा जी ने डिसाइड किया था कि वो पब्लिकली जया जी को कभी भी एम्बैरस नहीं होने देंगी अपने रिश्ते के कारण, रेखा जी और अमिताभ जी के रिश्ते के कारण। ऐसा कब हुआ था कि जया जी रोई थी, वो भी रेखा जी के सामने, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं अमित जी की उस फिल्म से गाना जिसमें उन्होंने पहली बार गाना गाया था, मिस्टर नटवरलाल फिल्म से गाना। लता जी भी है साथ में और किशोरदा की भी आवाज है। सुनिए ये गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, मैं रुचि आपके साथ।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नु हुनेछ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। अमित जी और रेखा जी की इस प्यार भरी कहानी को मैं आपके सामने लेकर के आई हूं आज के इस एपिसोड में। वैसे आपको पता है, रेखा जी काफी आलसी किस्म की एक्ट्रेस हुआ करती थी। आलसी नहीं तो लेट बैक तो मान ही सकते हैं इन्हें। पंक्चुअल नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं थी, तब तक जब तक वो अमित जी से नहीं मिली। सेट पर लेट आना तो इनका हमेशा का ही था, 2-3 घंटे बाद ही आती थी वो सेट पर। लेकिन दो अनजाने के सेट पर अमित जी से जब ये मिली तो उन्हें मानो देख करके एक अलग रिस्पेक्ट आई थी अमिताभ जी के लिए। वो इतने डिसिप्लिन के साथ में काम करते थे कि उन्होंने रेखा जी को भी फाइनली डिसिप्लिन रहना और पंक्चुअल रहना सिखा ही दिया। लेकिन जैसा मैं आपको बता रही थी कि एक बार जया जी रेखा जी के सामने रो पड़ी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार फिल्म का ट्रायल शो चल रहा था और उसके दौरान पूरी बच्चन फैमिली आई हुई थी और रेखा जी प्रोजेक्शन रूम में बैठी हुई थी। जया जी पहली रो में बैठ करके फिल्म देख रही थी और अमित जी अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ पीछे की रो में बैठ करके ये फिल्म देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि रेखा जी प्रोजेक्शन रूम से इन दोनों को देख सकती हैं, वो भी साफ साफ। एक ऐसा सीन आया था जिसमें अमित जी और रेखा जी का लव सीन था, कुछ रोमांस, कुछ नज़दीकियाँ दिखाई थी इन दोनों के बीच में, जिसे देखते हुए जया जी की आंखें नम हो गई थी, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे और पोछते पोछते वो एक फिल्म को देख रही थी। और बाकी किसी ने देखा हो ना देखा हो, रेखा जी ने जया जी के आंसू देख लिए थे और उस समय रेखा जी जया जी का दर्द समझ पाई थी। एंड दैट वॉज द टाइम जब कहते हैं रेखा जी ने ये डिसाइड किया था कि पब्लिकली कभी वो जया जी को अपने इस रिश्ते के कारण एम्बेरस नहीं होने देंगी। खैर, कुछ इसी कारण से रेखा जी और अमिताभ जी के बीच में भी थोड़ी सी दूरियां आ गई थी, लेकिन ज्यादा दिन के लिए ये दूरियां चली नहीं थी। बाद में सिलसिला फिल्म इन दोनों ने साथ में की ही थी। फिलहाल सुनाती हूँ आपको सुहाग फिल्म से अगला गाना। और रेखा जी को भी अपना सुहाग मिला था, शादी भी हुई थी, फिर भी क्यों अकेली रह गई रेखा जी, बात करेंगे इसके बारे में कुछ ही देर के बाद। यू स्टे ट्यून्ड।

0: Radio Show.
1: मैं हूं रुचि आपके साथ। अमिताभ जी और रेखा जी की लव स्टोरी के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसे किस्से सुना रही हूं जो शायद आपने ना सुने हो। वैसे तो इन दोनों की लव स्टोरी जितनी इन्होंने छुपाने की कोशिश की उतनी ही लोगों के सामने और आती गई। वैसे ऐसा नहीं है कि अमित जी और रेखा जी के अलग हो जाने के बाद रेखा जी ने मूव ऑन नहीं किया। शी डिड मूव ऑन। उनकी शादी हुई थी मुकेश अग्रवाल जी के साथ। हुआ कुछ ऐसा था कि रेखा जी के फ्रेंड ने उन्हें मुकेश जी से मिलवाया था, जो कि दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन थे। दोनों मिले, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, प्यार व्यार भी हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद जब वो लंदन गए थे हनीमून के लिए, तब रेखा जी को कुछ तो गड़बड़ लगा। एंड देन शी रियलाइज्ड कि मुकेश जी क्लिनिकली डिप्रेस्ड थे, डिप्रेशन से जूझ रहे थे, काफी दवाइयां लेने लगे थे और किसी भी और औरत की तरह रेखा जी को पहले तो लगा कि वो संभाल लेंगी, किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगी। लेकिन 3 महीने के बाद मुकेश जी ने रेखा जी को ये बताया कि उनकी जिंदगी में कोई और है, और ये सुनकर रेखा जी ने मुकेश जी को छोड़ दिया। इन सब के बाद मीडिया थोड़ी ना कोई छोड़ने वाली थी। मीडिया ने काफी बात का पतंगड़ बनाया, काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। मुकेश जी वैसे ही डिप्रेस्ड थे और ये सब कुछ वो झेल नहीं पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। मुकेश जी के सुइसाइड का असर सबसे ज्यादा रेखा जी पर, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर ही पड़ा था। काफी लोग इस बात से अनजान थे कि मुकेश जी डिप्रेस्ड थे और इसीलिए जब उन्होंने सुइसाइड कमिट किया तो रेखा जी को जिम्मेदार मानने लगे थे लोग। इनफैक्ट डायरेक्टर्स और एक्टर्स भी यही मानने लगे थे और इसलिए उन्हें मूवीज में भी लेना बंद कर दिया था कि शायद कोई नेगेटिविटी है रेखा जी के आसपास, शायद वो बैड लक लेकर के आती हैं अपने साथ में। लेकिन इन सब के बावजूद अमिताभ बच्चन जी थे जिन्होंने रेखा जी का साथ नहीं छोड़ा। दुनिया के सामने नहीं आए तो क्या हुआ, अकेले में सबसे बड़ा सपोर्ट बनकर के अगर कोई खड़ा रहा एक दोस्त की हैसियत से ही सही, तो वो अमिताभ बच्चन जी ही थे। और इस समय के बारे में तो रेखा जी भी खुल्लम खुल्ला बताती हैं कि वो समय जो सबसे लो समय था रेखा जी की जिंदगी में, उस समय सिर्फ अमिताभ बच्चन जी ही उनके साथ थे। क्यों इन दोनों ने कभी भी शादी का नहीं सोचा? इनफैक्ट एक समय तो ऐसा भी था जब अमिताभ जी पब्लिकली रेखा जी को अपना प्यार, अपनी जिंदगी मानने के लिए तैयार भी थे। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों कभी साथ नहीं आए, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। स्टे ट्यून्ड।

क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि हमारे दिल में मायूसी भी पैदा करती है और खुशी की तरंग भी पैदा करती है। खुशी इसलिए कि ये प्यार इतना गहरा था और मायूसी इसलिए कि ये प्यार कभी पूरा नहीं हुआ। अमिताभ जी और रेखा जी के प्यार के बारे में हम कर रहे हैं बात। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अमित जी ने कभी रेखा जी के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मैं बताती हूँ आपको कि इन दोनों के प्यार के बीच में हमेशा से एक और एक कैरेक्टर थी जो कि अमिताभ बच्चन जी से इतना प्यार करती थी कि उनके प्यार को जीत मिलना जरूरी ही था। मैं बात कर रही हूँ जया जी की। जब अमित जी जया जी को मिले थे तब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे एंड जया जी वॉज अ बिग स्टार। जया जी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती थी। अमिताभ बच्चन जी भी एक फेमस पोएट हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे थे। दोनों की फैमिलीज जो थी वो सेम लेवल पे थी, दोनों की थिंकिंग मैच होती थी, ट्रेडिशनल होते हुए भी दोनों मॉडर्न थे। दोनों के बीच में थोड़ी सी जम गई और दोनों ने शादी करने का सोचा। इनकी शादी की कहानी भी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थी। एक अपार्टमेंट में घाई घाई में दोनों ने शादी की थी क्योंकि जया जी के फैमिली वालों को पसंद नहीं था कि वो डेट कर रही हैं या लव अफेयर में हैं। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जल्द से जल्द शादी कर लें एंड दैट्स हाउ इनकी शादी हो गई थी। रेखा जी अमित जी की लाइफ में काफ़ी बाद में आई थी, इनफैक्ट तब जब जया जी प्रेग्नेंट थी। अमित जी अपने फैमिली के नियम के अगेंस्ट जाकर रेखा जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने ये रियलाइज करना शुरू किया था कि रेखा जी उनकी ज़िंदगी का सच्चा प्यार है। और एक समय ऐसा आया था जब वो चाहते थे कि रेखा जी को वो पब्लिकली एक्सेप्ट करे और जो सही है वो करे रेखा जी के साथ में भी। लेकिन यही वो समय था जब कुली फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था अमिताभ बच्चन जी का, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। एक ऐसा एक्सीडेंट जो कि उनकी जान भी ले सकता था, लेकिन थैंकफुली सब ठीक हुआ और अमित जी बच गए। ये वो समय था जिस समय जया जी ने इतनी सेवा की, इतना ख्याल रखा अमिताभ बच्चन जी का कि अमित जी रियलाइज्ड कि जया जी उनसे कितना प्यार करती हैं और वो जया जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और इस एक्सीडेंट के बाद अमिताभ बच्चन जी ने कभी भी मुड़ करके दोबारा नहीं देखा। आज तक भी लोग जानते हैं कि अमित जी और रेखा जी एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, लेकिन जया जी का प्यार इनके प्यार से ज्यादा बड़ा था। चलिए सुनाते हैं आपको आशा जी की आवाज में अगला गाना। किशोरदा भी है साथ में, गाना है फिल्म राम बलराम से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियाँ और आपके पसंदीदा गाने।

यशोदा मैया कहती है कि जब चोरी करता है तब पकड़ कर क्यों नहीं लाती, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा यही पहले घर पहुंचता है बाद में तुम आती हो, तुम्हारे घर चोरी करने आता है या तुम्हें परेशान करता है तभी हाथ पकड़ कर लाया करो। तो गोपियां कहती है कैसे लेकर आए,

कि कितनी बार तो मैंने देखा है कि तुम ही से माखन खिलाती हो, और अगर तुम ही प्रेम से माखन खिला रही हो तो ये तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों करेगा। गोपियाँ कहती है हमें जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, मजबूरी है। क्यों?

0: गोपियाँ कहती है अब तो हम जा रहे हैं यहाँ से, हमें पता है आप तो कुछ मानने वाले हो नहीं, लेकिन अब अंतिम बार हम चेतावनी दे रहे हैं। हम हर बार आपसे आकर कहते हैं अगली बार अगर हम ही दंड दे देंगे। गोपियाँ कहती है इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है,
1: इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है,
0: इसे समझा दे यशोदा।

चोरी सब करते हैं, ये तो तुरंत निकल जाता है, बाकी बेचारे पकड़े जाते हैं और मार

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: आदरणीय श्रोता, पौराणिक कालको प्रसंग एकातिर छ, तर आजको 21 औं शताब्दीमा बुवा र सन्तानको सम्बन्ध कस्तो छ त? अब यस बारेमा थोरै मन्थन गरौं। हाम्रो समाजमा बुवालाई प्राय कडा नबोल्ने वा आफ्नो भावना व्यक्त नगर्ने पात्रको रूपमा हेरिन्छ। आमाले दुःख पाउँदा आँसु झारेर पोख्नुहुन्छ, तर बुवाले आफ्नो दुःख कहिले आँसुमा पोख्नुहुन्न। बुवाको माया देखिँदैन, तर त्यो मायाको छाया यति ठूलो हुन्छ कि त्यसले परिवारलाई जीवनभरि घाम पानी हुरी बतासबाट जोगाउँछ। वर्तमान समयको वास्तविकता, आदरणीय श्रोता, पसिना र सङ्घर्ष। हाम्रा धेरै बुवाहरू खाडीको 50 डिग्री तापमानमा पसिना बगाउँदै हुनुहुन्छ ताकि घरमा सन्तानले राम्रो शिक्षा र सुख पाउन्। आफ्नो जुत्ता फाटे पनि सन्तानका लागि नयाँ कपडा किनिदिने त्यागको नाम हो बुवा। अर्कोतर्फ वृद्धाश्रमको तितो सत्य आजको आधुनिक समाजमा एउटा नमिठो यथार्थ पनि जोडिन पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालमा ह्याप्पी फादर्स डे भनेर पोस्ट गर्ने, तर व्यवहारमा बुवा आमालाई एक्लो बनाउने वा वृद्ध आश्रमसम्म पुर्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। देखावटीपन र औपचारिकता, वर्षको एक दिन मिठाई र उपहार दिएर बाँकी 365 दिन बुवाको भावना र स्वास्थ्यको ख्याल नगर्नु वास्तविक धर्म हुन सक्दैन। डिजिटल युगमा फोटोको लाइक र कमेन्ट भन्दा बुवासँग बिताएको 10 मिनटको प्रत्यक्ष कुराकानी नै धेरै अमूल्य हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, आमा 9 महिना कोखमा बोकेर आमा बन्नुहुन्छ भने बुवा जीवनभर काँधमा बोकेर बुवा भन्नुहुन्छ।
1: पिता पर कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। सबसे पहले कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया, मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। पिता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पिता कैसे बच्चों को पालते हैं, एक नज्म सुनाता हूं पिता पर। उसी के अंश हैं हम सब, उसी का सच्चा नाता है, उसी की परवरिश से अपना जीवन सांसें पाता है, वही बचपन में हमको अपने कंधों पर बिठाता है, हमें उंगली पकड़कर बस वही चलना सिखाता है, हमारे वास्ते जो अपने सब दुख भूल जाता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। पिता उपवास करके अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिता बच्चों के सुख में अपने सब दुख भूल जाते हैं, पिता बच्चों को अपनी गोद में मेला घुमाते हैं, पिता बच्चों के सपनों को भी इस दुनिया में लाते हैं, पिता का नाम तो ताजिंदगी ही काम आता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। फलक से चांद सूरज और तारे कौन देता है, मुसीबत से निकलने के इशारे कौन देता है, कदम जब डगमगाते हैं सहारे कौन देता है, मोहब्बत की नदी के हमको धारे कौन देता है, पिता का नाम ही हर जहन में क्यों जगमगाता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। एक ऐसी रोशनी जो उम्र भर तक झिलमिलाती है, पिता की सीख तो अंतिम समय भी काम आती है, पिता वह शय है जिससे हर मुसीबत हार जाती है, पिता वह शय है जिससे हर मुसीबत हार जाती है, सभी रिश्ते हैं मतलब के, पिता ही असल साथी है, वही है धन्य जो चरणों में उनके सर झुकाता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। इन्हीं पद चिन्हों पर चलकर सफर आसान हो जाए, जमाने और दुनिया में भी पहचान हो जाए, पिता क्या है जिसे भी इसका थोड़ा ज्ञान हो जाए, फिर उस इंसान की भी जिंदगी वरदान हो जाए। हमारी जिंदगी का हर पल जो फूलों से सजाता है, हमारी जिंदगी हर पल जो फूलों से सजाता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। पिता के दम से ही माँ के सभी श्रृंगार होते हैं, कभी फूलों से लगते हैं कभी तलवार होते हैं, पिता के हाथों ही रिश्तों के बेड़े पार होते हैं, हमारी हर कहानी का पिता किरदार होते हैं, पिता का साया सर पर हो तो हर मौसम सुहाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। पिता की शक्ति पर चलता नहीं जादू न कुछ टोना, पिता की सीख होती है मुसीबत में भी मत रोना। पिता कहते हैं संकट में कभी साहस नहीं खोना, पिता पीतल की दुनिया में भी होता है खरा सोना। अंधेरे में पिता उम्मीद का सूरज उगाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना बिठाता है। पिता हो तो कभी छूने नहीं पाती कोई मुश्किल, पिता हो तो अकेलापन भी बन जाता है एक महफिल। पिता बिन रास्ता भटकोगे पाओगे न तुम मंजिल, लहू मस्तिष्क बाजू और पिता ही है धड़कता दिल। पिता है आत्मा जो इस बदन में जान लाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना बिठाता है। पिता बन जाओगे जब उनके दुख सुख जान जाओगे, पिता के दर्द को पीड़ा को तुम पहचान जाओगे। कभी उनकी तरह जब खेत और खलिहान जाओगे, पिता फौलाद की चट्टान थे यह मान जाओगे। पिता मुश्किल घड़ी में हंसता है सबको हंसाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। अभागे हैं वो बेटे जो पिता को छोड़ देते हैं, घुटन में जीते हैं ताजा हवा को छोड़ देते हैं। निकलती है जो दिल से उस दुआ को छोड़ देते हैं, समझ लीजिए कि वो अपने खुदा को छोड़ देते हैं। पिता सेवक पिता मालिक पिता ही सबका दाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है, हमारे वास्ते जो अपने सब दुख भूल जाता है। पिता का नाम तो ता जिंदगी ही काम आता है, पिता का नाम ही हर जहन में क्यों जगमगाता है। वही है धन्य जो चरणों में उनके सर झुकाता है, हमारी जिंदगी हर पल जो फूलों से सजाता है। पिता का साया सर पर हो तो हर मौसम सुहाता है, अंधेरे में पिता उम्मीद का सूरज उगाता है। पिता है आत्मा जो इस वदन में जान लाता है, पिता मुश्किल घड़ी में हंसता है सबको हंसाता है। पिता सेवक पिता मालिक पिता ही सबका दाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना दिखाता है।